0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: This is Leica Radio. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
2: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
0: Wake up to Kajal every weekday morning on Breakfast. Leica Radio.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म से ती संबंध।

पुरख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भाव है साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए, जाए।

0: गई। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
1: Is Leica Radio across the Midlands.

0: मनर उदास, कंचन एंड आनंद हलवे, क्या प्यारा वाला गाना है। फिरोज खान, विनोद खन्ना एंड जीनत अमान, लवली मूवी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट। ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: Now make the summer memorable with South All Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that include flights, hotels and at all protection. Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit South All Travel or call on 0208-574-8410.
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
3: List up. Itna sasta deal dekha hai kabhi?
4: Nahi? To chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs. Sirf 24.99.
3: Hamza Samosas 3 for 10.
4: Top Star Fried Onions only 99p.
3: Suhana Masalas 2 for 150. Ramdev Namkeen 2 for 149.
4: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
3: Kesar Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry.
4: 82 Assistant Street LE12JU या Rowlett Hill LE54UN.
3: While stocks last.
4: 105 shows पूरा करे पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
5: जेज एंटरटेनमेंट लेने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
4: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सकना रे जो हस्बैंड जी
6: द पीपल सेंटर इज सेलिब्रेटिंग 20 अमेजिंग इयर्स एंड यू आर इनवाइटेड जॉइन द फ्री समर फैमिली मेला ऑन संडे 24th ऑफ मे फ्रॉम 11 a.m. टू 6 p.m. एंजॉय लाइव एंटरटेनमेंट वाइब्रेंट डांस परफॉर्मेंसेस एंड हेडलाइन आर्टिस्ट नविन कुंद्रा लाइव ऑन स्टेज प्लस डिलीशियस फूड फन राइड्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स अ लाइवली बाजार एंड मोर फॉर द होल फैमिली डोंट मिस दिस Fantastic free day out at the People Centre, Orchardson Avenue, Leicester. For inquiries, call 0116 261 6000.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June. June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
10: नन ईटन गेट रेडी पेपेस पेरी पेरी इज फायरिंग अप समथिंग बिग आवर स्टोर इज नाउ ओपन फ्रॉम फ्लेम ग्रिल्ड चिकन टू माउथ वाटरिंग रैप्स इट्स बोल्ड इट्स स्पाइसी इट्स प्योर पेपेस विजिट अस एट 126 एबी स्ट्रीट CV11 5BZ पेपेस पेरी पेरी पेपेलिशियस
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
12: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62 to 64 बेल

0: Grave Road, LE4 5AS. Call on 0116 332 5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
1: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स नॉन स्टॉप.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ।
1: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
2: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favorite presenters live. Get the tune-in details at LeicaGold.com.
3: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baate, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
4: Leica Radio Network. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। सबसे पहले मैं क्षमा याचना, समाचार भी और कार्यक्रम भी थोड़ा देर से मैं शुरू कर रहा हूँ, या शुरू तो हो चुका है। आप गीत संगीत सुनते रहे, वीर का धन्यवाद लुक आफ्टर करने के लिए। कभी कभी रास्ते में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आइए देखें आज की खबरें क्या कह रही हैं। एयर फ्रांस और एयर बस को 2009 में हुए एक हवाई हादसे में गैर इरादतन हत्या का कसूरवार पाया गया है। इस हादसे में 228 लोगों की मौत हुई थी। पेरिस की अदालत ने एयरलाइन और हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी को इस हादसे के लिए अकेले और पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से पेरिस जा रही फ्लाइट AF447 अटलांटिक महासागर में गिर गई थी। तूफान के दौरान हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ गया था और वो समुद्र में जा गिरा था। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। विमान में 12 क्रू मेंबर्स और 216 मुसाफिर सवार थे। इसे फ्रांस के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। अप्रैल 2030 में एक अदालत ने दोनों कंपनियों को इल्जामों से बरी कर दिया था, लेकिन 8 हफ्ते चली सुनवाई के बाद कल गुरुवार को उन्हें कसूरवार ठहराया गया, गिल्टी पाए गए। दोनों कंपनियां लगातार आरोपों से इनकार करती रही हैं। उन्होंने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। भारत से आने वाली खबरों में धारा भोजशाह, धारा भोजशाला हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज जुमे के रोज वहां कैसा माहौल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की ओर से 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानने के फैसले के बाद आज पहले जुमे, उसके बाद फैसले के बाद यानी आज शुक्रवार के दिन भोजशाला में लगभग 2000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में सुबह से ही सिक्योरिटी इंतजाम कड़े कर दिए गए थे और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भोजशाला कैंपस में विशेष मूर्ति स्थापित की गई है। इसके दर्शन और पूजन के लिए सुबह से लोग वहां पहुंचने लगे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के नेताओं ने हाई कोर्ट के आदेश पर दुख जताया है और साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका डालने वाले कुलदीप तिवारी ने बताया कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें ये जीत मिली है, हमें हमारी जगह वापस मिली है। हम लोग बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उसकी इजाजत नहीं मिली। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में दूसरी बार ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी की मुलाकात चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच समझौते और विवाद को, झगड़े को सुलझाने के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए बैठक चल रही है। पाकिस्तानी होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बुधवार को वहां पहुंचकर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है, सीनियर अफसरान से मुलाकात की है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके अगले हफ्ते नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक के बारे में जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के न्योते पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मंत्री मार्को रूबियो 26 मई 2026 को होने वाली क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बयान पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कल कहा कि अगले हफ्ते वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की भारत यात्रा पर जो है आने की बात पक्की है। उनके इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 10 मई 2025 की शाम 5:30 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान करने वाले पहले व्यक्ति थे। कल उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट भारत दौरे पर आ रही है। ये भारत और वेनेजुएला की ओर से इस खबर का कोई संकेत या पुष्टि होने से भी पहले हुआ। ये कैसे हो रहा है? अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर की अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक और स्टेटमेंट आई है। उन्होंने क्यूबा को अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समझौते की संभावना ज्यादा नहीं है। एक बार फिर भारत की ओर रुख करते हैं। वहां से आने वाली खबरों में दिल्ली सरकार की विकास मिनिस्ट्री ने बकरीद को लेकर के गाइडलाइंस जारी की हैं और ये जानकारी दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर गोवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य जिन पर पाबंदी लगी है जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल की नई सरकार ने भी गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी और कहा कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, गाय की कुर्बानी देने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए कल कैबिनेट बैठक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक उपयोगी रही। हमने ईज ऑफ लिविंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और डेवलप्ड इंडिया को साझा के सपने को साकार करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने संबंधी विचारों पर चर्चा की है। और ये पहली बार है जब धोनी ने, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, सीएसके की ओर से आईपीएल के एक सीजन में एक भी लीग मैच नहीं खेला है। टीम के वो हिस्से हैं। कल गुरुवार को सीएसके ने इस सीजन का आखिरी लीग मैच खेला। यह मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ था, जिसे शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम ने 89 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। मैच के बाद सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से अगले सीजन में धोनी के लिए भाई खेलने से संबंधी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि जब आपको अगले साल ही पता चलेगा कि जब वही आईपीएल होगा, मुझे भी अगले साल ही पता चलेगा। उनकी कमी हमें निश्चित तौर पर, ये ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा जो कैप्टन हैं सीएसके के, कहने लगे उनकी कमी हमें डेफिनेटली महसूस हुई है। और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A12802 ने कल शाम इंजन में आग लगने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। इस हवाई जहाज में 160 यात्री सवार थे। अलर्ट जारी हुआ, लेकिन एयर इंडिया ने इस घटना पर बयान यानी स्टेटमेंट दी है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में हवाई जहाज की अंतिम लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान कॉकपिट क्रू को एक इंजन में आग लगने का संकेत मिला था और बाद में ये संकेत सही भी पाए गए, लेकिन क्रू ने ठीक बड़े सुरक्षित तरीके से हवाई जहाज को लैंडिंग कराई। सभी यात्री भी सुरक्षित रहे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं। आइए लौट आते हैं अब संगीत की ओर। Like a radio network, my name is Ravi Sharma and I'm with you till 1 o'clock this afternoon.

0: on to Leica Gold 2. Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2. Gold 2.
1: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HartyHanks.com now. Harty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HartyHanks.com now.
2: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
3: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: और बहन भाइयों, अगला गीत हमें 11 बजे की खबरों तक ले जाएगा और खबरों के उस पर रवि शर्मा आपको चिंतन सुनवाएगा। लेकिन भाई, बात यह है कि आज थोड़ा सा जो आपको एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ा और वीर ने मेरी जिम्मेदारी बड़ी खूबसूरती से निभाई, मैं उनका शुक्रिया मैंने अदा किया। लेकिन चक्कर क्या होता शर्मा जी, हर थोड़े दिन बाद ये आप भाई क्या करें साहब, जवाब शायरी में दें, कब तलक हौसला करे कोई, आज वो फैसला करे कोई। ऐसे मिलने से तो ये बेहतर है कि शोक से ना मिला करे कोई, घर ही रहो, कोई पाए मुराद बिन मांगे और बस दुआ और दुआ करे कोई, मेरा शिकवा मेरी मोहब्बत है, गैर से क्यों गिला करे कोई। मैं भाइयों यकीन मानिए, ये कुछ चीजें होती हैं बियॉन्ड आर कंट्रोल। अब देखिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, हाँ, पहले कार से सफर करता हूँ, फिर मैंने पार्किंग अरेंज कर रखी है, वह गाड़ी पार्क करता हूँ और वो जो गाड़ी जिसकी बहुत बढ़िया लाइन है लेकिन बड़ी बुरी सर्विसेज हैं जिसकी, क्या कहूँ मैं, एलिजाबेथ लाइन, हाँ भाई, उससे सफर करता हूँ और वो कभी लिफ्ट खराब, कभी एस्केलेटर खराब, कभी सिग्नल खराब, कभी इंजीनियरिंग वर्क और कभी ट्रेन ही खराब, कुछ भी हो ट्रेन भाई लेट होती है और इतनी लेट होती है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। अब क्या करें साहब, सुबह 4 बजे उठकर भी अगर बंदा समय पर अपने लोगों के बीच ना पहुंचे तो क्या कहें। मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है, देर में जानबूझ के नहीं करता, देर हो जाती है, क्या करें।

स्वागत है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर मनोरंजन प्रोग्राम में। मेरा नाम है रवि शर्मा, आपका प्रेजेंटर दोपहर बाद एक बजे तक। और बहनों भाइयों, इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हो चुके हैं, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं थॉट फॉर द डे, यानी आज का विचार। और आज के विचार में हम विचार शामिल कर रहे हैं शिवपुरी त्रिपाठी जी का, साउथ हॉल से भिजवाया है। पंडित शिवपुरी त्रिपाठी कहते हैं कि रवि जी, आप हमेशा महापुरुषों के जन्मदिन की चर्चा करते हैं, आज एक भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाने वाले और मॉडर्न इंडिया के जनक भी कहे जाते हैं वो, आज उनका जन्म हुआ था। यस, आज 22 मई है और 22 मई 1772 में, 1772 में बंगाल के राधानगर में जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का। और बहनों भाइयों, राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली हुई कई कुरीतियों के विरुद्ध, कई गलत ट्रेडिशंस के खिलाफ आवाज उठाई। भाई किसी समय वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन सनातन में, भारतीय समाज में ये अच्छी बात है कि जब जिस प्रथा की जरूरत ना हो वो उसे बदल डालते हैं, हटा देते हैं, मिटा देते हैं। किस समय कब वो प्रथा शुरू हुई, कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन समय बदला है तो हमें भी बदलना चाहिए। चर्चा करते हैं आज के विचार का, शिवपुरी त्रिपाठी जी का विचार, आज का चिंतन।

राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा पति की मृत्यु के बाद पत्नी पति के साथ सती हो जाती थी। कितनी तकलीफ दे मौत होती होगी वो। उन्होंने इस ट्रेडिशन को खत्म कराने के लिए लगातार कैंपेन चलाया और उन्हीं की कोशिशों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। वैसे भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी और आज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है यह प्रथा। राजा राममोहन राय ने और भी कई काम किया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। एजुकेशन के फील्ड में भी उन्होंने बहुत काम किया और पत्रकारिता जर्नलिज्म भी उन्होंने शुरू किया। एक अखबार निकालने लगे थे उस समय में, देखिए। लेकिन बहनों भाइयों, बात सती प्रथा की करना चाहता हूं कि कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। भारत जैसे जागरूक समाज में ऐसी ट्रेडिशन, देखिए साहब, विधर्मियों के हाथों पड़ने से पहले अपनी इज्जत को, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं ने आत्मदाह करने के लिए जो कदम उठाया वो सतीत्व कहलाया। पर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, आपको बताएं। हमारे यहां कूद पड़ी थी पद्मिनी, अंगारों पे आता है एक आलेख, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनी अंगारों पे, यह अपना राजपुताना नाच जी से तलवारों पे। यानी विधर्मियों के हाथों पड़ने से पहले अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए महिलाएं जान तक दांव पर लगा देती थीं। जब उनके पति युद्ध में शहीद हो गए और सुरक्षा दिखाई न दी तो महिलाओं ने यह कदम उठाया। पर आज सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी को देखते हुए महिलाओं को ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। महिलाओं के लिए उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, कोई भी आगे आएगा और विश्वास दिलाएगा कि आप सुरक्षित हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। एक ट्रेडिशन आपको बताएं, रावण के बेटे मेघनाथ की पत्नी के बाद उनकी पत्नी, मेघनाथ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुलोचना सती हो गई। पर रावण के यहां, क्योंकि वो राक्षसों से घिरी थी, उसने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए असमर्थ शायद समझा होगा, इसलिए वो मेघनाथ के साथ सती हो गई। लेकिन उसी समय, उसी दौर में अयोध्या में श्री राम जी की पूजनीय माता श्री कौशल्या, उनके पति दशरथ की मृत्यु के बाद वो सती नहीं हुई, होने की जरूरत भी नहीं थी। सुमित्रा, केकई और भी भाई कई महिलाएं ऐसी थी जिन्हें सती होने की आवश्यकता नहीं थी, भला ही जिनके राम लक्ष्मण जैसे बेटे हों, जिनके यहां अयोध्या जैसे राज्य में धर्म की स्थापना हो। राम राज्य तो कहते ही हैं, सुरक्षा देने के लिए था। अब सोचिए, आजकल मॉडर्न युग में बताते हैं आपको, उत्तर भारत में एक ट्रेडिशन त्रिपाठी जी कहते हैं हमने देखी, किसी महिला के पति की डेथ हो गई, अंतिम संस्कार के बाद उनके बड़े बेटे ने हवन किया, गृह शुद्धि के लिए सारे काम किए गए, पूजन हुआ, पगड़ी की रस्म अदा की गई। पिता की मृत्यु के बाद बेटे के सर पे जो पगड़ी रखी जाती है वो जिम्मेदारियों का प्रतीक है, सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो परिवार की जिम्मेदारी, विशेषकर मां की जिम्मेदारी उठाता है। मां, पिता सर पर नहीं रहे लेकिन आप हर तरह से सुरक्षित हैं, मैं हूं ना। मां को अब वो कठोर जीवन जीने की आवश्यकता नहीं। तभी एक और देखी बात देखिए भाई, कि वो बेटा इस पगड़ी की रस्म की अदायगी के बाद घर के अंदर से एक सोने का कंगन निकाल के लाता है और मां को पहनाता है। ये ट्रेडिशन है, इसका क्या मतलब है? अरे बेटा मां को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी दे रहा है, सोने का कंगन। मां, कौन कहता है कि
आपको स्वर्ण नहीं पहनना, आभूषण नहीं पहनने हैं, मैं पहनाता हूं, पिता नहीं है पर मैं हूं ना। बेटा पिता की जगह लेता है, पिता का की जिम्मेदारियां सर पे उठाता है, पगड़ी बंधवाता है तो मां को विश्वास दिलाता है आई एम योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आई एम टू सर्व यू मां, तुम्हें सती होने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने आप को वैधव्य भोगने के लिए मजबूर मत समझो। बेवा विधवा अभिशाप नहीं है, पति नहीं रहा सर पे, बेटे तो है ना। तो देखिए इस तरह से सती प्रथा समाप्त हुई। समाज में बदलाव समय के अनुसार जहां होता है वो समाज प्रगति करता है। मां को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मां जन्म देने वाली है, उसे सती क्यों होना पड़े। उसने आत्मदाह करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। राजा राममोहन राय ने यह बदलाव किया, हम भी अपने मस्तिष्क में अपने ब्रेन में यह बदलाव करें। सिक्योरिटी ने मां को, भाइयों को, बहनों को, छोटे परिवार को।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, थॉट फॉर द डे। और बहन भाइयों, आज का चिंतन सती प्रथा को लेकर के है। कुछ प्रथाएं किसी कारण किसी समय शुरू हुई, लेकिन समय के साथ बदलाव सूझबूझ का परिचायक होता है। हम लकीर के फकीर नहीं हैं, हम अपनी माताओं का, अपने समाज का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, हर तरह की संभाल सकते हैं। हादसे होते हैं, लेकिन हमें उनसे निपटना आता है, समय के अनुसार ढलना आता है, समय के साथ चलना आता है। राजा राममोहन राय, जिनका आज जन्मदिन पड़ता है, भाई बंगाल में जन्मे थे, सती प्रथा को समाप्त करवाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। इसके अनुसार और भी समाज सुधार के कार्य किए, धीरे धीरे लोगों ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि इतनी सूझबूझ हम में है कि अब वक्त की आवश्यकता ये है। वो किसी मजबूरी में शुरू हुई प्रथा अब समाप्त हो रही है। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें पंडित शिवपुरी त्रिपाठी जी ने भिजवाया, और जो गीत हमने सुनवाया भाई, मातृ प्रेम का, श्रद्धा का परिचय किए, गीत कई बार हमने प्रोग्राम में शामिल किया है। आज का चिंतन, आज का विचार समेटते हुए बता दें आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं भाई, रेट अच्छा चल रहा है। अगर भारत में अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो मौका है। आज का रेट बता दूं आपको, एक पाउंड जो आपकी पॉकेट में है आज दिला सकता है SBI से 128.35 रुपीस मैक्सिमम। इसके अलावा भाई कुछ और भी जुड़ा है इस संदेश के साथ कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन ए 75 pounds वाउचर एवरी डे एंड व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds तभी ये मिलेगी फैसिलिटी। लेकिन इसके अलावा अगर 2000 pounds से ज़्यादा भेजते हैं तो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक दिया जाएगा भाई। Terms and conditions apply, याद रखिएगा।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99।
4: हमजा समोसास 3 for 10।
5: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
4: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
5: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
4: केसर मैंगो पल 149। फुल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54 UN.
4: While stocks last.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Z105. ZTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
9: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse, 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner, Laika Radio.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
13: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
14: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊँगा।
15: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
13: अरे कहाँ हो तुम?
14: हो आनो आनो।
16: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
17: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
18: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. For quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
19: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
20: Leica Radio.
19: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
21: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: तो फिर उसके बाद,
1: उसके बाद
0: एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन,
2: एक तारा बोले
0: तुन तुन,
3: एक तारा बोले सबकी पोल खोले। भाई मनोज कुमार साहब ने उस समय ये गीत फिल्म में शामिल किया। आज थोड़ी सी फीलिंग्स बदल गई हैं लोगों की, कैसे नेता चाहिए वो अब थोड़ा डिफरेंट भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन भाई गीत सुनवाया हमने आपको महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, एंड देट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म यादगार। अगला गीत सुनवाने से पहले एक संदेश है हमारे पास, कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, ए स्पेशल म्यूजिकल फीचर, एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट, एक संगीत संध्या फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड 515 बैंड। भाई ये जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है 19 जून को, कहाँ? द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल में, ये एसेक्स में है। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड।
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: किशोर कुमार साहब के बहुत सारे दीवाने हैं, आपको याद है भाई एक समय किशोर कुमार के गीतों पर रेडियो पर बजाने के लिए पाबंदी लग गई थी। बड़े मूडी थे किशोरदास, संजय गांधी जो उस समय भाई इंदिरा गांधी के सुपुत्र बड़े पावरफुल लीडर थे, और उन्होंने किसी कार्यक्रम के लिए इनकी आवाज़ मांगी थी, कहा था कि आके गाओ, और इन्होंने इनकार कर दिया, नहीं गाएंगे, फ्री में तो नहीं गाएंगे भाई, मूडी थे ना। तो साहब कुछ समय के लिए रेडियो पर आकाशवाणी से इनके गीतों का प्रसारण बंद हो गया, और साहब बाद में कुछ समय बाद जब शुरू हुआ कहते हैं कि रफ़ी साहब खुद गए दिल्ली, और उन्होंने जा कर के इंदिरा जी से रिक्वेस्ट की कि किशोर दा के गीतों से पाबंदी हटाई जाए। ये कहने में आया है भाई, सुनने में आया, बहुत देर तक ये बात रफ़ी साहब ने किसी को नहीं बताई, लेकिन बहुत बाद में पता लगा भाई उनके प्रयास भी शामिल थे किशोर दा को वापस लाने में। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें सुनिए।

0: is Leica Radio across the Midlands. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: बहुत सारे संदेश आके स्क्रीन पर चिपक गए हैं भाई, गीत सुनवाते सुनवाते आपको धन्यवाद भी दोहराते चलें। वत्सला जी, राजीव पटेल वत्सला कहती है कि सनातन की यही तो खूबसूरती है कि वो एडजस्ट करना जानता है, वो बदलना जानता है दुनिया को भी और स्वयं को भी। नैना शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अर्जुन जी, हिना जी, थैंक यू।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a radio.
0: Like a extra podcast update.
4: लाइका एक्स्ट्रा पर भाई आपको बता दें कि हमारा नया एपिसोड धूम मचा रहा है एंड दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस. यस, बहुत गंभीर जानकारी है इसमें, होस्टेड बाय दीप राजा. इज डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज? नहीं साहब, मानसिक जो प्रताड़ना होती है वो भी, और किस तरह से तंगिया, सारी बातें डिस्कस की गई हैं उसमें, तो आप जरूर देखिएगा. और ये भी बता दूं कि पुराने हमारे एपिसोड्स भी वहां अवेलेबल हैं. Like extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Like extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Backed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
11: T's and C's apply.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
15: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
14: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
15: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
14: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil
15: on Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
14: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner Leica Radio.
16: The People Centre is celebrating 20 amazing years and you're invited. Join the free summer family mela on Sunday 24th of May from 11 a.m. to 6 p.m. Enjoy live entertainment, vibrant dance performances and headline artist Navin Kundra live on stage. Plus, delicious food, fun rides, arts and crafts, a lively bazaar and more for the whole family. Don't miss this fantastic free day out at the People Centre, Orchardson Avenue, Leicester. For inquiries, call 0116 26 1 6000.
17: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
18: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
17: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
19: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
20: Okay, help's on its way.
21: Grab my hand!
19: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
22: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
23: It was just another day. A familiar drive. Through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.
7: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: गीत सुनवाने से पहले भाई याद दिला दूं आपको कि आज है 22 मई। आज कई लोगों के जन्मदिन पड़ते हैं आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। है किसी का जन्मदिन? बहुत से लोग, फेमस लोग भाई आज जन्मे थे 22 मई को, जिनमें कुछ नाम शामिल हैं। मैंने राम मोहन राय जी का तो जिक्र किया चिंतन में। इसके अलावा देवदास गांधी वॉज बॉर्न टूडे ऑन 22nd of May 1900। और साहब पद्मनाभ सिंह महाराजा जयपुर 1999 में जन्मे थे भाई। अभी भी भले ही वो राज प्रथा समाप्त हो गई है लेकिन राज परिवार तो है ना, राजवंश तो है ना। 22 मई 1999 में जयपुर के महाराजा नौजवान पद्मनाभ सिंह का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन जन्मे थे कौन, जन्मी थी महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज ही के दिन जन्मे थे उत्कर्ष शर्मा। ये कौन है भाई? उत्कर्ष शर्मा को नहीं जानते? अच्छा बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो। ग्रेट गामा भी आज ही के दिन जन्मे थे। मेरी जानकारी के अनुसार अमृतसर के किसी गांव में, भारत में उनका जन्म हुआ था लेकिन पार्टीशन के समय वो पाकिस्तान चले गए थे। बड़ी धूम थी, बड़ा नाम था उनका। मैंने एक बार दारा सिंह जी से पूछा था इंटरव्यू के दौरान रेडियो पर के भाई आपको लोग रुस्तमे जमा कहते हैं, वर्ल्ड चैंपियन। तो मैं कहा रुस्तमे जमा क्या गामा नहीं थे? बोले नहीं, वो पाकिस्तान में ही रह लिए। उसके बाद लंदन में भी उनकी कुश्ती हुई थी लेकिन रुस्तमे जमा यानी पूरे वर्ल्ड के वो चैंपियन नहीं बने थे, ये दारा सिंह जी का कहना था। लेकिन साहब गामा का नाम और काम जो है वो दुनिया में मशहूर था, द ग्रेट गामा। मजे की बात यह कि उनका जन्मदिन आज है, उनकी डेथ भी 22 मई को ही हुई थी ऐसा सुना है। 22 नहीं तो कुछ लोग 23 मई कहते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए कि जन्मदिन और बरसी एक ही दिन मनाई जाती है उनकी। 1960 में 82 बरस की आयु में उनकी डेथ हुई थी लाहौर में। और भाई जन्म उनका अमृतसर जिले के किसी गांव में, भारत में हुआ था। गामा को हमने याद किया और भाई उत्कर्ष के बारे में मैं कह रहा था। उत्कर्ष एक्टर हैं पर बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं आए वो। आई थिंक सनी देओल के साथ एक फिल्म अभी पिछले दिनों उनकी आई थी पर उसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। उत्कर्ष शर्मा हैं गदर बनाने वाले अनिल शर्मा के बेटे। और भाई आपने गदर देखी होगी ना, तो उसमें वो जो बच्चा है तारा का बेटा अमीषा पटेल और सनी देओल के साथ, अरे भाई वो गीत गुनगुनाते हुए पाकिस्तान पहुंच जाता है अपने पिता के साथ।

0: उत्कर्ष शर्मा भाई अब तो नौजवान हो चुका है, बड़ा हो गया है, फिल्म में हीरो भी आया, पर उसके बाद अनिल शर्मा ने उसे और किसी फिल्म में नहीं दिखाया। अनिल शर्मा उनके भाई पिताजी, यहाँ लंदन में मुझसे मुलाकात हुई थी, प्रॉमिस किया था रवि जी जब अगली फिल्म बनाऊंगा तो आपको भी शामिल करूंगा। ऐसे बहुत सारे वादे धरे। तो भाई अनिल शर्मा जी के पिताजी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, फिल्मों में इतनी दखलंदाजी के बावजूद उत्कर्ष शर्मा बड़े खूबसूरत गोलमटोल से वो नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे, भाई वो आपने देखे होंगे गदर फिल्म में, उनका जन्मदिन। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। ठहर जाओ यहीं पर, केक मंगवाता हूँ, जन्मदिन मनाने वालों के नाम कटवाता हूँ। जो बात यहाँ है, जो ठाठ यहाँ है, और कहीं नहीं है शर्मा जी।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates if you want to send money to India, Pakistan, Bangladesh, wherever your friends, family members are. By 1 pound ke badle in Indian currency they are giving 128.47 rupees. Pakistani currency mein 373.96. For 1 pound in Sri Lankan rupees they giving 456.86. Bangladeshi take 164.92 and Afghani 84.55.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of 108.57 pounds per gram.
1: Specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278. Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: अली जी साहब बता दें आपको, कल के मैच का जो फैसला हुआ भाई वो तो गुजरात टाइटंस के पक्ष में गया। अहमदाबाद में खेला गया था कल का मैच, 89 रनों से उन्होंने गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की और चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। किसी जमाने में चेन्नई सुपर किंग्स वालों का दबदबा रहता था आईपीएल में, लेकिन भाई अब वैसी टीम नहीं लग रही थी। आज के मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलोर और हैदराबाद के बीच मुकाबला समझिएगा। दोपहर बाद 3 बजे हैदराबाद में जब मैच शुरू होगा, स्कोर के आंकड़े हम यहां से आप तक पहुंचाना शुरू करेंगे। सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
3: ये है लाइका रेडियो।
4: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द जॉय no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: Very good afternoon to you, bhai. SBI UK का इस समय का जो रेट चल रहा है मैं बता देता हूँ, पैसे भिजवाने का मौका है वैसे, मतलब भले ही ये रुपए के लिए अच्छी बात ना हो, लेकिन यहाँ रहने वाले जो भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए अच्छी बात है कि रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इस समय आज का रेट बता रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले 128.35 रुपीज़, 128 रुपए और 35 पैसे मैक्सिमम यू कैन गेट ऑन अनदर थिंग भाई, सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून. खास बात क्या है कि यू कुड बी इन टू विन, यू विल बी इन टू विन ए 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, और अगर 2000 या उससे ज्यादा भेजते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक कुड बी वॉन. तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो भाई मौका है, फायदा उठाइए, पैसे भिजवाइए.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 LBS, sirf $24.99.
2: Hamza Samosas, 3 for 10.
3: Top Star Fried Onions, only 99p.
2: Suhana Masalas, 2 for 150. Ramdev Namkeen, 2 for 149.
3: Hira Gram Flour, 179. Heinz Ketchup, 279.
2: Kesar Mango Pearl, 149. Full Makana, 245. Falcon Cash and Carry.
3: 82 Assistant Street, LE12JU. Ya Rowlett Hill, LE54UN.
2: While stocks last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap avitra yatra ma jodao aapna parivar saathe. Jyaan madshe shanti, bhakti ane anand. Ane saathe Eiffel Tower, Seine River Cruise ane Paris City Tour no anand mano. Departure 5 September na Mantra Holidays. Call karo 0203-773-6333. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
16: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
15: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
16: Or sales at leicamedia.co.uk.
17: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और बहनों भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है शम्मी कपूर. शम्मी कपूर भाई मेरे कार्यक्रम में तो एज एन आर्टिस्ट ऑफ द वीक वो आखिरी बार मेंशन किए जा रहे हैं, लेकिन वीकेंड तक आप उनकी कई फिल्मों के गीत सुन पाएंगे. शम्मी कपूर जन्मे थे आई थिंक 21 अक्टूबर 1931 में, 21st अक्टूबर 1931, और भाई उनका निधन हुआ 14 अगस्त 2011 में. दो शादियां की थी उन्होंने. पहली शादी उनकी गीता बाली से हुई थी 1955 से 1965 तक चली, जब उनकी मृत्यु हो गई 65 में. फिर कुछ समय के बाद उन्होंने नीरा देवी से शादी की 1969 में. शम्मी कपूर पृथ्वीराज जी के सुपुत्र और भाई राज कपूर, शशि कपूर के भाई, और साहब फिल्मी जगत में उन्होंने अपनी अलग से पहचान बनाई. अब आइए उनका एक ऐसा गीत सुनवाते हैं जो शायद आपने बहुत बार नहीं सुना होगा, और हमें नैना शाह ने सुझाया है ये गीत, और भाई आपके लिए स्पेशली मैं लाया हूँ ये गीत. सुनिए और एंजॉय कीजिए.

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज, सच्चाई फिल्म का गीत शम्मी कपूर पर पिक्चराइज भाई, और बहुत सारे ऐसे यादगार गीत हैं जो अभी वीकेंड तक तो आप सुनेंगे ही शम्मी कपूर की फिल्मों के, क्योंकि ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। लेकिन वैसे भी भाई गाहे बगाहे आप सुनते रहते हैं शम्मी कपूर आर्टिस्ट ऑफ द वीक। आपने सुना उनकी फिल्म का गीत, और नैना थैंक यू वेरी मच।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और सखियों को लाइका रेडियो नेटवर्क पर।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और मैंने भाई अपने कुछ एक भाई ऐसे कार्यक्रमों के विषय में आपको जानकारी पहुंचा दें जिनके साथ हम सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे राम ये जो कार्यक्रम हो रहा है, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द शो हमारे राम, स्टारिंग बड़े सुप्रसिद्ध भाई संवाद अदायगी के लिए और हिंदी भाषा के लिए आशुतोष राणा इसमें रावण की भूमिका निभा रहे हैं, राहुल बुचर जो है वो श्री राम के रोल में होंगे एंड इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 9th and 12th July एट लंदन एवेंटिम अपोलो जो हैमर स्मिथ में है। तो भाई ये नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। इसके अलावा लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कन्फर्म्ड पार्टनर ऑफ द कुमार शानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल, ये बैंक हॉलीडे मंडे को हो रहा है भाई, 25 मई को बहुत नज़दीक है। मुझे यकीन है कि आपने अपनी टिकटों की व्यवस्था कर ली होगी, पर जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है, तो बी श्योर टू बी।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities.

0: कल्याण जी आनंद जी के बराई धुन पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ये गीत गा रहे थे यार। आनंद जी भाई बताते हैं इस गीत के साथ कुछ रियल सिचुएशंस जुड़ी हुई थी उनकी बेटी रीता के साथ।
1: तू झूठ कहाँ बोली, तू झूठ नहीं बोली, प्यार को ही पूजा कहते हैं प्यार के परवाने।
0: हीरा फिल्म से लिया था ये गीत, 1973 में आई थी। साउथ ओल्ड ट्रेवल वालों का एक संदेश है भाई जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ ओल्ड ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एडल्ट प्रोटेक्शन। 40 वर्षों से भी ज्यादा समय से भाई वो टूरिस्ट के घूमने फिरने वालों के सैलानियों के लिए बड़े भरोसेमंद साबित हुए हैं एंड दे आर विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड एज वेल। विजिट साउथ ओल्ड ट्रेवल और कॉल 0208574 8410।
2: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है
4: Leica Radio
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for rest-

0: वो दिन याद करो जब इसी समय इसी फ्रीक्वेंसी पर आपने ये गीत बजाया था। शर्मा जी बहुत देर नहीं हुई है, पर कुछ गीत इतने प्यारे होते हैं, कुछ हटकर न्यारे होते हैं, सुनने को बार बार मन करता है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और साहब आपको हम लम्फाई के रेट्स बता देते हैं। एट दिस टाइम टुडे दे आर गिविंग हाउ मच फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 128.49 इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी रुपए वो दे रहे हैं 373.79, श्रीलंकन रुपए 452.25, बांग्लादेशी टकास 164.99 एंड अफगानी 84.5।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold. Well, the gold is sold at the rate of 108.57 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
4: Leica Radio. Yeah, hey, Leica Radio.
5: Leica
3: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Tata IPL 2026 में भाई मुकाबले जो हैं अब अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। कौन कौन सी टीमें होंगी प्ले ऑफ में आपको बता दें कि अब नतीजे बड़े स्पष्ट होते जा रहे हैं। कल के मैच में आप सुन चुके हैं कि गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हराया। बड़ा अंतराल था। आज के मैच में क्या होने वाला है? आज भिड़ंत हो रही है सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। भाई ये मैच जो है हैदराबाद में खेला जाएगा तो होम स्पोर्ट रहेगी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। दोपहर बाद 3 बजे ये मैच शुरू होगा। टोटल मैचेस जो है वो 74 खेले जाने हैं और ये 67th मैच आज हो रहा है। स्कोर के आंकड़े हमारे पास रहेंगे, हम आपको पहुंचाते रहेंगे हैदराबाद से। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
6: की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
0: किसने मुझे सदा दी, किसने मुझे पुकारा, आवाज देने वाले आवाज दे दोबारा। कौन बुला रहा है?

0: क्या बात है इन गीतों के भाई, ऐसे ऐसे गीत आपको लाइका नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर ही सुनने को मिलते हैं। और देखिए रिस्पांस में बहुत सारे संदेश आते हैं। अविनाश पटेल जी आप जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। जैस्मीन आपका पैगाम आ गया। अरुणा भूपेंद्र पटेल, निर्मला जी, सुनीता शर्मा, राजीव पटेल वत्सला, शेखर जी, हंसा वोरा, रागिनी और भाई महेंद्र बजारिया साहब, विजय, ये सारे वो लोग हैं जो मेरे परिवार के बहुत घनिष्ठ रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई कुछ ऐसे भी हैं जो संदेश नहीं भेजते लेकिन सुनते हैं खामोश लिसनर, उन सबको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और ये तस्वीर किसने भिजवाई है भाई? कोई हैंडसम है जिसकी तस्वीर है ये? कौन है ये? असद भाई आपने भेजी है क्या? कहाँ से मिली ये तस्वीर आपको? बड़ी खूबसूरत है। ये हैंडसम रवि शर्मा लगता है, थैंक यू। और नहीं ये आप कौन है जी? आपने अपना नाम नहीं लिखा। ये तस्वीर आपने भी बहुत अच्छी भिजवाई है भाई। हरीश भाई केम छो तमे? सारू प्रभुनी कृपा एजाज जैशम में सुन रहे पम्मी स्लाव में, ज्योति और गिरीश शाह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एजाज को रफी साहब के गीत, रफी साहब के नहीं सभी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं और वो गीत का पूरा पोस्टमार्टम करके बता देते हैं भाई, कब बना, किसने गाया, किसने संगीतबद्ध किया, कौन सी फिल्म से लिया गया, इनकी जानकारी बड़ी पुख्ता है बता दूं आपको। और साहब हमारे हरीश रोडा जी, रंजन जी, आपको भी गीत पसंद आ रहे हैं? हिट अल्ला भारत और सलमा मेडस्टोन में जुड़ी है हमारे साथ, आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।
1: Is Leica Radio. Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, Siddhayu. Now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
10: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
11: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
12: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
11: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया,
12: दिल तो टूट पे गया,
11: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
13: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
11: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel, prime location,
14: high appreciation
15: in Dubai.
10: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. Manoranjan with Ravi Sharma.
1: जब से मेरे यार ने ठुकराया है, अपने लिए तो हर कोई पराया है। कभी महफिल की जान होता था, अब तो मैं हूं और मेरा साया है। चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। हैव ए सुपर्ब वीकेंड। बाय बाय।

0: send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Right, भैया SBI UK का काम पहले कर लेती हैं, उसके बाद आपका स्वागत करूंगी मैं, क्योंकि एकदम से जल्दी से जब कोई काम हो जाता है तो गड़बड़ थोड़ी सी हो ही जाती है. राइट, आपको बता दें कि अगर SBI UK के जरिए पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो योर £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे कितने पैसे, कितने रुपए, 128 रुपीज एंड 35 पैसास. और यही नहीं, SBI योनो ऐप के जरिए या ब्रांच में जाकर अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं बाय एंड ऑफ जून तो यू कैन विन £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds एंड आल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds. सो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें. ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून. इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू इंजॉय. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो सरिता चुन चुन कर लाती है आप ही के लिए. आजकल रोज ही मुलाकात हो रही है आपसे. अच्छा लग रहा है आपको? मुझे तो अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप मेरे साथ होते हैं और आप अपने होने का जब एहसास भी दिलाते हैं तो और भी अच्छा लगता है. यस, जब आप मुझे मैसेजेस भेजते हैं और बताते हैं कहाँ बैठे सुन रहे हैं प्रोग्राम, हर गीत के बाद इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वाह सरिता कितना अच्छा गाना था, इतने अरसे के बाद सुना, हमारी ये यादें जुड़ी हैं इन गीतों के साथ, तो और भी अच्छा लगता है. तो शुरू हो जाएं अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं भेजा. वैसे स्क्रीन मेरी फुल है, सभी के सभी मेरे जो रेगुलर हैं वो पहुंच चुके हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपने कभी किसी को मैसेज नहीं किया तो आज कीजिए ना. सरिता को बता दें कि कहाँ बैठे कौन से कान मेरी तरफ हैं. और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके कान उधार चाहिए. तो शुरू हो जाएं, जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज भेजिए.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99.
4: हमजा समोसास 3 for 10.
5: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
4: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
5: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
4: केसर मैंगो पल 149. फूल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 एसिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
4: While stocks last.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: The People Center is celebrating 20 amazing years and you're invited. Join the free summer family mela on Sunday, 24th of May from 11 a.m. to 6 p.m. Enjoy live entertainment, vibrant dance performances and headline artist Navin Kundra live on stage. Plus, delicious food, fun rides, arts and crafts, a lively bazaar and more for the whole family. Don't miss this fantastic free day out at the People Center, Orchardson Avenue, Leicester. For inquiries, call 0116-261-6000.
10: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
11: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
10: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
11: Also explore 2026 cruises
10: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162-167-225. We're at protected. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Atif Aslam, live in the UK.
13: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
0: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: राजेश खन्ना थे इस फिल्म के हीरो और हीरोइन थी इस फिल्म की शर्मिला टैगोर। लेकिन ये वाला गाना जो है किस पे पिक्चराइज हुआ था आपको याद है? याद है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। और एम आई गेटिंग कन्फ्यूज कि ये गाना फरीदा जलाल और राजेश खन्ना पर पिक्चराइज हुआ था या फिर शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पे? अरे भाई बहुत साल हो गया ना फिल्म देखी नहीं है। 1969 की फिल्म थी। एस डी बर्मन साहब का संगीत और उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया। जो भी मेरे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैसेजेस भेज रहे हैं बड़े प्यार से, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। कौन से कान कहाँ बैठे सुन रहे हैं मुस्कुरा दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ साथ हैं। राइट, और भाई प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में हम याद करने जा रहे हैं वेद राही जी को, जो कि एक ऑथर रहे हैं और उन्होंने बहुत सी फिल्में लिखी, उनकी स्टोरीज लिखी, स्क्रीन प्ले लिखे या फिर उनके डायलॉग्स लिखे, कुछ डायरेक्ट भी की फिल्में, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्रोग्राम के इस आवर में क्या चल रहा है क्या आपको पता चले? अगर पता चले तो बता दीजिएगा। बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ कि ये गाना जो अभी अभी आपने फिल्म आराधना से सुना वो गीत आप तक किसने पहुँचाया?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी, मोहम्मद रफी साहब एंड आशा जी की आवाज़ें आपने सुनी। और विजय गुदरोई जी क्या कहते हैं, सरिता जी, आराधना वॉज द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी आई सॉ, होप यू वेल, आई सॉ व्हेन आई फर्स्ट अराइव्ड इन द यूके। ओके राइट, और थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन। और आप क्या लिखते हैं, गुड आफ्टरनून किशोर लाडवा, लिस्निंग टू यू वंडरफुल प्रोग्राम, थैंक यू आपका भी। जहीर खान साहब, मेरे सवाल का जवाब किसने नहीं दिया है कि वो गाना किस पे पिक्चराइज हुआ था, फरीदा जलाल एंड राजेश खन्ना पर या शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना पे। और जहीर खान साहब कराची में सुन रहे हैं, विश्वजीत राजू, थैंक यू आपका भी। एंड शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, आपने लिखा है। अरुणा जी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, फरीदा जलाल एंड राजेश खन्ना पे पिक्चराइज हुआ। ये किसने जवाब दिया, ये कौन है, राजेश अपना नाम लिखा, नौशाद जी आप लिखते हैं। अब मुझे फिल्म देखनी पड़ेगी, फरीदा जलाल और राजेश खन्ना पर गाना पिक्चराइज हुआ था ऐसा पम्मी जी ने लिखा है। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, बाद में जरूर शामिल करूंगी।
0: LYCA, this is Laika. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like the radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com, or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk.
2: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
4: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
3: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

0: फिल्म का नाम था बेटी बेटे और सुनील दत्त एंड शोभा खोटे, महमूद जैंत, इन सब ने इस फिल्म में काम किया था। और इस फिल्म की हीरोइन कौन थी, याद है आपको? मुझे नहीं याद है, अगर आपको याद है तो मुझे बता सकते हैं, वैसे मैं थोड़ी थोड़ी भुलक्कड़ भी हूँ। एनीवे, आई थिंक शोभा खोटे वॉज द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म, अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता सकते हैं आप जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, ये मुझे मालूम है, और गीत बड़ा खूबसूरत था मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा भोसले की आवाज़ें। तो इस प्रोग्राम के इस आवर में आपने वही सारे गीत सुने जिनमें ये दो आवाजें शामिल रही, और कुछ गीत और भी अभी आने वाले हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.76, Pakistani rupees 373.88, Sri Lankan rupee 454, Bangladeshi taka 165.5, Afghanis 84.49.
2: Like her. Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: और गोल्ड का रेट इस वक्त क्या है जी मार्केट में? लेटेस्ट रेट है 108 pounds and 33 pence का एक ग्राम सोना।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
0: एंड महेंद्र बरजारिया जी लिखते हैं साउथ हैरो से, सरिता जी इस फिल्म की हीरोइन थी बी सरोजा देवी। एंड महेंद्र, अच्छा महेंद्र जी आपने लिखा है ये। विजय जी आपने भी मैसेज भेजिए, विजय घनोवा आप सुन रहे हैं। और विश्वजीत राजू जी क्या लिखते हैं, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर वो गाना पिक्चराइज हुआ था, कोई कहता है फरीदा जलालपल हुआ था, मुझे फिल्म दोबारा देखनी पड़ेगी। एंड सरिता जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? अरुणा शाह जी हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें। फरीदा गुलाम अली जी, पमीज सिंह जी इंसलाव, और आप कौन हैं, आशिमा इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर से आपने मैसेज भेजा है, थैंक यू। तोची जी आप भी सुन रही हैं, तोची पन्नेसर, भारती डीडी, हाना, ज्योति, गिरीश शाह, दिनेश पोपट जी आप सब हमारे साथ हैं, हंसा वोरा जी आप भी हैं हमारे साथ, और ये कौन है, अपना नाम ज़रूर लिखा करें, हरीश कत्री जी, थैंक यू। इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिएगा। और अब ज़रा अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले क्रिकेट अपडेट भी देख लें।
3: My name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: बड़ी जल्दी थी बालीजी को बोलने की, हाँ चलिए आइए अब क्रिकेट के बारे में जानिए।
1: Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, we आज मैच किसके बीच है? सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में मैच होने वाला है। 3 बजे मैच यहाँ शुरू होगा, तो फिर हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, इसलिए कहीं नहीं जाना, हमारा साथ देते रहना है। वैसे भी मैं तो यही कहती हूँ, जो भी काम कर रहे हैं आप काम करते रहिए, सिर्फ और सिर्फ कान मुझे उधार दे दीजिए, क्योंकि इन कानों में मैं अच्छे अच्छे गीतों का रस खोलती रहती हूँ। आपको पसंद आते हैं गीत, ये जानकर अच्छा लगता है। हाँ तो बता रही थी मैं आशा जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ शामिल है प्रोग्राम के इस आवर के गीतों में। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे गीत पसंद आए। अगला गीत मैंने 1965 की फिल्म बेदाग से चुना है, तो सुनने के लिए तैयार रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।

0: जो ज्यादा सुनने में नहीं आते हैं, लेकिन जब कभी भी हम सुनते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। और बेदाग फिल्म का गीत था और 1965 की ये फिल्म थी और इस फिल्म में नंदा थी, मनोज कुमार एंड शशिकला। फिल्म को डायरेक्ट किया था आर भट्टाचार्य ने। और भई अब एक गीत और इस आवर में मैं शामिल कर पाऊंगी और गीत ज़रूर आप पसंद करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है। वैसे तो सारे गाने बहुत अच्छे होते हैं सरिता के प्रोग्राम में, या अपने मुँह मियाँ मिठू, क्योंकि मुझे संगीत से प्रेम है तो मेरे चुने हुए गीत भी आपको पसंद आते हैं, ये जानकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और अगला गीत है फिल्म भरोसा से। कौन सा गीत आपके जहन में आ रहा है जिसे आशा भोसले एंड रफ़ी साहब ने गाया और सरिता शामिल करने वाली है? सोचते रहिए।
1: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's are apply.
5: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
6: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
5: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
6: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
5: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse, 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner Leica Radio.
11: Ab London baithe milega Asian ethnic swad instantly, thanks to Gemin Foods.
12: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Sheera, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
11: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with Gemin Foods.
5: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
13: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
5: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
13: Or sales at leicamedia.co.uk.
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
14: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
15: अगर हम साथ हैं
14: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
16: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
17: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड TV. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स.
18: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स. Like a Radio 90s, like a Radio Punjabi, like a Gold 2.

0: प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आप ही की प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। आई एम सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मबर जी। इस वीक भी और नेक्स्ट वीक भी आपका साथ निभाऊंगी एंड प्लस वीकेंड पर भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। इट्स 14 मिनट्स आफ्टर 2 o'clock। वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो फर्स्ट आवर में बड़े प्यारे प्यारे गीत थे आशा जी एंड रफी साहब के गाए हुए। प्रोग्राम के ये दो गाने मैंने चुने थे फिल्म चरस और प्रेम पर्वत से। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि इन फिल्मों के ईदर स्क्रीन प्ले राइटर और राइटर या फिर डायलॉग राइटर या डायरेक्टर उन वो रिलेटेड थे इन फिल्मों के साथ। किस तरह से मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। नाम है इनका वेद राही। आज ही के दिन ये पैदा हुए 1933। इज़ एन इंडियन ऑथर और ज़्यादातर इन्होंने डोगरी लैंग्वेज में लिखा है, स्टोरीज़ लिखी हों, डायलॉग्स लिखे हों, ज़्यादातर डोगरी लैंग्वेज में लिखे। ही डायरेक्टेड वेल रिसीव्ड मिथोलॉजिकल सीरियल मीराबाई फॉर दूरदर्शन इन 1996 under UTV Productions, and he is also credited for screenplay and dialogues of various Hindi Bollywood films and TV serials, and he directed the film called Veer Savarkar in 2001, biopic on the life of Indian revolutionary Vinayak Damodar Savarkar, unke upar ye bani thi film। और राही साहब यानी वेद राही साहब का जन्म हुआ जम्मू में ऑन 22 मई 1933 में। आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। एंड हिज फादर मुल्क राज सराफ स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द स्टेट ऑफ जम्मू, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड टाइटल रणबीर इन 1924। एंड सराफ साहब, मुल्क राज सराफ साहब वॉज प्रेजेंटेड विद द सिविल अवार्ड पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976। और अब वेद राही जी के बारे में बता दूं। वेद राही पब्लिश वेरियस शॉर्ट स्टोरीज इन डोगरी लैंग्वेज एंड अलोंग विद नरेंद्र खजूरिया, मदन मोहन शर्मा एंड प्रोफेसर नीलांबर देव शर्मा इज कंसीडर्ड एज नोटेड डोगरी राइटर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इनकी किताबें भी हैं बहुत सी लैंग्वेजेस में। इन्होंने जिन फिल्म्स के साथ ये रिलेटेड रहे, तो पहले तो मैं बता दूँ चरस का जो गीत आपने सुना, तो चरस फिल्म के डायलॉग राइटर रहे थे वेद राही। और दूसरी फिल्म प्रेम पर्वत का गीत आपने सुना, तो प्रेम पर्वत के लिए ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। क्या बात है। तो मुझे उम्मीद है दोनों गीत आपने पसंद किए। और भी गीत आ रहे हैं इन्हीं की फिल्मों के सिलेक्शन से, तो मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, B, your £1 in British sterling can get you today 128 rupees and 35 paisas. Agar aap SBI Yono app ke zariye ya branch mein jaakar paise transfer karate hain by end of June, to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. And also, 1 gram gold coin aapko mil sakta hai every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: भाई एक मुलाकात नहीं, बहुत सी मुलाकातें होंगी। सरिता कल भी आ रही है, परसों भी आ रही है, नेक्स्ट वीक भी आपके साथ ही रहेगी। नेक्स्ट वीक आई विल बी सिटिंग इन अगेन फॉर मिस्टर बाली ब्रह्मर जी, जो हॉलीडेज मना रहे हैं, और मैं उनकी जगह इस हॉट सीट पे बैठ जाऊंगा। फील गुड ट्रैक
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भी थोड़ा सा सैड गाना है लेकिन बहुत प्यारा गीत है किशोरदार ने गाया। परीक्षित सानी जो कि अजय सानी के नाम से भी जाने जाते हैं वो और तनुजा थी इस फिल्म में। फिल्म का नाम था पवित्र पापी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
0: और अब आपको जरा जल्दी से मैं याद दिला दूं आतिफ असलम जी के शो के बारे में। लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द आतिफ असलम शो। लंदन में हो रहा है ये कॉन्सर्ट, टेकिंग प्लेस ऑन संडे 14th जून एट द O2 लंदन। टिकट्स अवेलेबल एट AXS एंड the venue, and Ragasan Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details aap le sakte hain laikaradio.com par.
2: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Laika Gold and Laika Radio Midlands.
0: राइट भी सरिता के ऊपर ही साउथ हॉल ट्रैवल की बात होगी, पर कोई बात नहीं। साउथ हॉल ट्रैवल वालों की एक मैसेज है, मेक द समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल्स, एक्सप्लोर बीच ब्रेक, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल एंड एट ऑल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल और कॉल 02 08 574 8410 for their assistance.
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
0: भी प्रोग्राम में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हो जाए।
3: Like an extra podcast update.
0: राइट, बता दें आपको कि पॉडकास्ट एपिसोड 17 अब आप देख सकते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस पर बेस्ड है और इसे होस्ट कर रहे हैं दीप राजा जी। एंड इज डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज? As South Asians, do we downplay the situation, mental and health traumas of survivors where accessible support is available? So, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो फिर दीप राजा जी का साथ दीजिए और आप देखिएगा क्या क्या देखना है आपने, हमारा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट एपिसोड 17 और पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर,
4: ये है
3: लाइका रेडियो।
4: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02 0 3 9 6 3 5 7 5 7. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: 105 shows pura karya pachi. Have Leicester ma avi rahyu chhe. Ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
8: Jay's Entertainment line avi rahya chhe. Sakhna re jo husband ji.
7: Leena Shah ane Samir Shah saate. Hasiyano full dose. 28 June People Center Leicester ma. Be shandar shows. Bapore adi vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 eventbrite.co.uk.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 value.

0: क्या बात है इन गीतों की. वेल, ये फिल्मी इन फिल्मों के जो मैं गीत सुना रही हूँ, इन फिल्मों के राइटर रहे, डायलॉग राइटर रहे, प्रोड्यूसर रहे, या इन्होंने डायरेक्ट की फिल्म, स्क्रीन प्ले लिखे. और ये हैं वेद राही जी, जिनका आज बर्थडे है. उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई. और उम्मीद करती हूँ सारे के सारे गीत आपने पसंद किए. वैसे हर गीत के बाद मुझे आपकी तरफ से इशारा मिलता रहा है. थैंक यू एवर सो मच आपके प्यार का. और उनकी किताबें भी हैं. राही साहब पब्लिश वेरियस शॉर्ट स्टोरीज इन डोगरी एंड हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू वेरियस अदर इंडियन लैंग्वेजेस. एंड फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविज़न के लिए भी काम किया है. एंड टेलीविज़न में गुलशन एंड गुलफाम, दूरदर्शन के लिए जिंदगी इन 1987, मीराबाई इन दूरदर्शन एज वेल. एंड अवार्ड्स भी मिले उन्हें. साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर फॉर डोगरी फॉर दिस शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन. एंड और भी बहुत से काम किए वेद राही जी ने. उन्हें हम उनके बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई देते हैं.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you 128.36 Indian rupees, Pakistani rupees 374.34 and Sri Lankan rupee 458.82, Bangladeshi taka 165.20 and Afghanis 84.65.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LIKA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's £108.18 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: This is Leica. India Cricket Score Updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: 3 baje match shuru hone wala hai Sunrisers Hyderabad and Royal Challengers Bengaluru ke beech.
1: India Cricket Score Updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
3: Om Namah Shivaya.
0: ये गीत मैंने लिए है फिल्म सन्यासी से, 1975 की फिल्म, लता जी एंड मुकेश जी की आवाज़ें. हेमा मालिनी एंड मनोज कुमार पर ये गाना पिक्चराइज हुआ. इस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे वेद राही जी ने.

0: सच में आज तो जलता है बदन क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत था प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से, 1998 की फिल्म, इकबाल अफजल साबरी जी के साथ अनुपमा देशपांडे की आवाज शामिल थी। और दूसरा गीत आपने सुना रजिया सुल्तान से 1983 की फिल्म लता जी की आवाज। दोनों ही गाने जबरदस्त थे और उम्मीद करती हूँ आपने दोनों गीत पसंद किए। बहुत से साथी बराबर मेरे साथ हैं फ्रॉम 1 o'clock और बार बार मुझे मैसेजेस लिखकर बता रहे हैं ये गाना भी बहुत अच्छा है, वो गाना भी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ एक छोटी सी करेक्शन, जिन्होंने कहा था कि गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, वो गीत फरीदा जलाल एंड राजेश खन्ना पे पिक्चराइज हुआ था, तो उनका जवाब गलत था। वेल, असल में वो शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पर ही पिक्चराइज हुआ था गाना। अगर आपको थोड़ा भी शक हो तो आप देख सकते हैं, वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। जहीर खान साहब कराची में बड़े प्यार से सुन रहे हैं। विमल रायन जी थैंक यू। काशिफ आप भी सुन रहे हैं। सलमा मेडस्टोन कैंट में इंतशाब थैंक यू। पमी जी इंसलाव अरुणा दवे कहते हैं मजबूर कर देते हैं आप हमें मैसेज करने के लिए, ऐसा क्या? अरुणा जी आप भी सुन रही हैं। शशि पटेल जी वल्लभ विद्या नगर गुजरात में प्रोग्राम सुन रहे हैं। एंड भरत गंगा राम जी, मनु जी, अर्जुन जी, ज्योति गिरीशा, हंसा वोरा, साइमन यूसुफ, प्रकाश सोमैया जी, दिनेश पोपट जी, विनय विनोद एंड वरुण, फरीदा गुलाम अली, उल्लास इन टोरंटो, विजय गनोवा जी, विजय गुदरी जी दोनों ही सुन रहे हैं प्रोग्राम। एंड महेंद्र बरजारिया जी इन साउथ हैरो। एंड विश्वजीत राजू जी, तोची जी, मिसेस शेख, अमरजीत सूरज जी, हाना जी एंड उमा जी इन पटनी, सहर, हरीश रुडा जी, रानी जी, ओ माय गॉड बहुत लंबी लिस्ट है, तो जिनके नाम नहीं लिए ना आई एम सो सॉरी, क्या करूँ, बहुत कुछ करने को है। हाँ, और अभी अभी मुझे ध्यान आया कि मुझे आपको चॉइस देनी है दो गानों में से एक गाना चुनने की। आपको मैंने बताया था कि होमी वाडिया उनके उनका भी आज जन्मतिथि है, 22 मई 1911 में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मैं कुछ ही गाने उनकी फिल्मों के ज़रूर शामिल करूंगी, अदरवाइज दिस विल बिकम विंटेज गोल्ड प्रोग्राम। एंड विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आप सुनते हैं हमारे यहाँ से हर वीकेंड को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सैंडी शाह लेकर आते हैं। सो जबक के दो गीतों में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना, या महलों ने छीन लिया बचपन का प्यार मेरा, मुकेश जी एंड लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ गीत, कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है? पर अब ज़रा ये काम भी कर लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी आज आपका 1 British sterling pound क्या दिला सकता है? 128 rupees and 35 paisas. और अगर आप SBI योनो ऐप के ज़रिए या ब्रांच में जाकर बिफोर एंड ऑफ जून अगर आप 1,000 pound ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड ओवर टू इंडिया, देन यू कैन गेट अ वाउचर एवरी डे फॉर 75 pounds। और इसके अलावा ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds, लेकिन टर्म्स एंड conditions तो हमेशा अप्लाई करती हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Ye hai Laika Radio. Laika
2: Radio. Gold Afternoons with Bali Brambert. Is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India. Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs, sirf $24.99.
2: Hamza Samosas, 3 for 10.
3: Top Star Fried Onions, only 99p.
2: Suhana Masalas,
4: 2 for 150. Ramdev Namkeen 2 for 149.
3: Here Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
4: Kesar Mango Pal 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry
3: 82 Assistant Street LE12JU. Yeah, Rowlett Hill LE54UN.
4: While stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: The People Centre is celebrating 20 amazing years and you're invited. Join the free Summer Family Miller on Sunday, 24th of May from 11 a.m. to 6 p.m. Enjoy live entertainment, vibrant dance performances and headline artist Navin Kundra live on stage. Plus, delicious food, fun rides, arts and crafts, a lively bazaar and more for the whole family. Don't miss this fantastic free day out at the People Centre, Orchardson Avenue, Leicester. For inquiries, call 0116-261-6000.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
12: Leicester Mela is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester. New hits on Leica Radio.

0: good.
1: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
3: जी हाँ, आर्टिस्ट ऑफ द वीक में इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट रहे शम्मी कपूर साहब. उनकी फिल्मों के बहुत से गीत आपने हर प्रोग्राम में सुने हैं. मैंने जो गीत चुना है वो बहुत अरसा हो गया हमारे यहाँ से प्ले भी नहीं हुआ है. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा ये गीत. मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म प्यार किया तो डरना क्या. शम्मी कपूर, बी सरोजा देवी, प्राण, ओम प्रकाश जी ने इस फिल्म में काम किया था. रवि जी ने और शकील बदायूनी साहब ने मिलकर काम किया था. शकील साहब के लिखे हुए गीत को कंपोज किया रवि जी ने, रवि साहब की आवाज़.

0: क्या बात है, इन गीतों का जवाब ही नहीं है। कितना प्यारा गीत फ्रॉम द फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, शम्मी कपूर साहब पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। उम्मीद करती हूँ मेरा चयन आपको पसंद आया, मेरा चुना हुआ गीत आपके दिल को भाया, थैंक यू। और दो गीतों की चॉइस दी थी मैंने आपको, महलों का, महलों ने छीन लिया, बचपन का प्यार मेरा, या फिर तेरी दुनिया से दूर चले होके मशहूर। तो ज़्यादातर वोट्स जो हैं वो पहले गीत को, यानी तेरी दुनिया से दूर होके मजबूर, इस गीत को ज़्यादा वोट्स मिले। तस्नीम जी थैंक यू, डॉक्टर नरेंद्र टुटेजा जी, अमर जी, मनु जी, इरम जी, शांति जी एंड किशोर जी, विमल रायन जी, काशिफ साहब, आप सबने इसी गीत को वोट्स दिए, लेकिन कुछ एक वोट्स किसे मिले दूसरे गीत को भी, महलों वाले गीत को, निर्मल एंड किरण जी, वो किसी और रोज़ में गीत ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगी। और अब जो गीत मैं प्रोग्राम में शामिल कर रही हूं वो है फिल्म जबक का गाना, वही जिसको वोट्स आपने दिए। लेकिन इस गीत को शामिल करने की एक वजह है, वजह ये है कि होमी वाडिया जो कि एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे इन बॉलीवुड, उन्हीं की ये फिल्म थी जबक। और जबक कौन से ईयर में आई थी, 1961 में। इस फिल्म का क्या क्या किया था भी इन्होंने बता देते हैं आपको। होमी वाडिया ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, और इस फिल्म में काम किया था महिपाल, श्यामा और अचला सचदेव ने। फिल्म का संगीत है चित्रगुप्त जी का। तो आइए पहले गीत सुनते हैं, फिर और भी बातें होंगी।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Disha Basmati Rice, available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last. Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
1: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
0: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
1: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
0: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
2: દિવ્ય અવસર પેરિસમાં ભવ્ય બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગમાં દર્શનનો લાભ. આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટુર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના. મંત્રા હોલિડેઝ, કોલ કરો 02037736333. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા.
3: હલકે ફુલકે મોમેન્ટ્સ કો ઓર ભી ખાસ બનાએ जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
4: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
3: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
7: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
8: खुद से भी ज्यादा.
6: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
8: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
6: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, 3394.
9: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
0: अनुपमा मंडे टू संडे एट 8:30 PM ओनली ऑन उत्सव प्लस. उत्सव प्लस, स्काई चैनल 705, वेजी मीडिया 803 एंड ईई 392.
10: प्रेजेंटेड बाय साउथ हॉल ट्रैवल, पावर्ड बाय टाटा टी प्रीमियम एंड वेल मैन एंड वेल वुमन बाय विटाबायोटिक्स.
5: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire, with the UK's biggest Asian hits.
11: Proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, 1 pound ke badle aaj aapko milenge Indian rupees 128.43, Pakistani rupees 374.15, Sri Lankan rupees 455.1, Bangladeshi taka 165.9, Afghani's 84.65.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: And it's £107.97 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22-carat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester. Or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: और मैच चल रहा है सनराइजर हैदराबाद एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एंड सनराइज हैदराबाद ने चूज किया कि दे विल बैट फर्स्ट. तो अब इन्होंने कितने रन्स बना लिए बता देती हूँ, 105 रन्स बना लिए और उनके दो खिलाड़ी आउट हुए इन 9.1 ओवर में.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए. Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
3: I'm Simon James. Expect some delays in the Wymswold area at Turnpost Farm. Reminder, it's the Glaston Budget Festival for the next several days. The M1 roadworks running fine at southbound at Leicester Forest East Services, junction 21A to 21. Not too bad for the M42 works near Birmingham Airport between junction 6 and 9. Heading into the West Midlands on the M6 South, it's slow at Wolverhampton junction 10, all because of an obstruction. London North Western trains, a 30-minute delay between Rugby and Leamington Spa. A reminder, reduced service for West Midlands Railway, the strike action until this evening, letting trains Lichfield to Bromsgrove and Lichfield to Redditch. That's the latest traffic and travel.
1: भाई ये था आज का प्रोग्राम और मेरी आज की मुलाकात यहीं ख़त्म हो रही है. मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह, उनका साथ दीजिएगा. मेरी अगली मुलाकात आपसे होगी कल 4 बजे की खबरों के बाद. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए. बाय फॉर नाउ.
0: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
4: You're listening to Bali Brahmert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises.
9: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: This Eid ul Azha, share share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
13: विजिट मंत्रा हॉलीडेज डॉट को डॉट यूके और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
14: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
16: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
17: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
18: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है
19: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डू गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
20: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA
19: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
21: नमस्कार रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा
22: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: Radio, part of the Leica Radio Network.
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: एक नई मोहब्बत की दास्तान तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
6: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
8: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
9: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
8: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
10: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk।
11: Another huge giveaway is coming. Leica Radio Network.

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

मेरा न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: पीपल सेंटर इज सेलिब्रेटिंग 20 अमेजिंग इयर्स एंड यू आर इनवाइटेड। जॉइन द फ्री समर फैमिली मेला ऑन संडे 24th ऑफ मे फ्रॉम 11 AM टू 6 PM। एंजॉय लाइव एंटरटेनमेंट, वाइब्रेंट डांस परफॉर्मेंसेस एंड हेडलाइन आर्टिस्ट नवीन कुंद्रा लाइव ऑन स्टेज, प्लस डिलिशियस फूड, फन राइड्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, अ लाइवली बाजार एंड मोर फॉर द होल फैमिली। डोंट मिस दिस फैंटास्टिक फ्री डे आउट एट द पीपल सेंटर, ऑर्चर्ड एवेन्यू, लेस्टर। फॉर इंक्वायरीज कॉल 0116-261-6000.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki

0: क्या। लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू। बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉन स्टॉप।
1: शादी तुझे से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं।
2: ये हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा।
0: Listen to Laika Radio 90s on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
3: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
4: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
0: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
0: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica रेडियो
3: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी.
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
4: दिल तो टूट पे किया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
2: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉन स्टॉप.